कह ना सकत केह। अचल मूरत अनुभव प्रकाश अमितोज कहिज। कोट इंद्र इंद्राण साहे सहन गणज। त्रिपवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। सत जुगत माण्यो शलयो बल बावन पायो। त्रेत तय माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तारथ कियो। उग्र सैन कौराज अपय भगत है जन दियो। कालयुग परमान नानक गोर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अबिचल अटल आद पुरख फुरमायो। मन कुचजी अमावन दोसड़े हौ क्यों सौ रावण जाओ जियो। मन कुचजी अमावन दोसड़े हौ क्यों सौ रावण जाओ जियो। एक दो एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिन्नी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी है जियो। से गुण मन नयावनी हौ कह जी दोस तरे जियो। क्या गुण तेरे वित्तरा हौ क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो। एक तटोल न अंबड़ा हौ सद कुर्बान तेरे जाओ जियो। सोयना रूपा रंगला मोती तय माणक जियो। से वस्तु सह दितिया मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो। हौ इनी टोली भुली अस तिस कंत न बैठी पास जियो। अंबर कुंजा कुरलियां बागब हेठे आए जियो। सा तन चली सोहरे क्या मोह देसी अगै जाए जियो। सुती सुती चाल थिया भुली वाटड़ी आस जियो। तै सहना लो मुती अस दुखा को तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। कर्महीन तन करे बिनंती कद नानक आवै वारी। सब सोहा गण मान रलिया एक देवहु रात मुरारी। बहुत जन्म बिछड़े थे।

एहो जन्म तुम्हारे लिखे कह रविदास आस लग जीवन चेर पय ओ दर्शन देखे लिख कत है न छूटी खेन खिन फूल नहार बखसनहार बखसल नानक पार उतार सुकह टल गोर सेवियन इस सहज सोभाए दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दी नूर अर सोह कुरसोह चटिया तुद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सावना दावे साहो सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोइया सावना दावे सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी राम काली महला पहला सुरत शबद साखी मेरी सिंगी बाजा लोक सुने पत चोली मंगण कहताई पीखिया नाम पड़े सुरत शबद साखी मेरी संगी बाजे लोक सुने पत चोली मंगण कहताई

एते गुण विसरे सिद्ध साध के अर जोगी जंगम पीर पुरुष बहुत रे जे तिन मिला तकीरत आखा तो मन सेव करे कागद लून रह कृत संग पानी कमल रह ऐसे भगत मिलह जन नानक तिन जम क्या कर कागद लून रह कृत संग पानी कमल रह ऐसे भगत मिलह जन नानक तिन जम क्या कर वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला पहला सुरत शब्द साखी मेरी सिंगी बाजे लोग सुने पत झोली मंगण कहताई भिखिया नाम पड़े।

खेत जो मांडियो सूरमा अब जोजन अब जोजन को दाओ अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जागुर देखा सामने तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज तन तन

दुष्ट दोखत लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद, कहें हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै, गहो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस गोविंद,

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईया। शब्दो तगावहु हरि केरा मन जिनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनहो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा, घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा। साचा नाम मेरा आधारो, साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनहो संतहो शबद धरहो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शबद तित घर सुभागै। घर सुभागै शबद वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे। आनंद सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन भए सरसे पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधार। जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वास्त तजी नह जाई नित नित
रख और तारो, तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा।

खुरासान खसमाना किया, हिंद सतान डराया। आपै दोष ना देई करता, जमकार मुगल चढ़ाया। एती मार पई कर लाने, तै की दर्द ना आया। जब बाण लाग्यो तब रोस जाग्यो, करं लै कमाणं अनं बाण ताणं। आस कृपान खंडो खड़ग, तुपक तबर अर तीर, सैफ सरोही सह थी। यह हमारा पीर, जाओ ताओ प्रेम खेलन का चाओ। सिर तार तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरी जै। सिर दीजै कान न कीजै, कबीर मोहे मरने का चाओ है। मरौ ता हर कै द्वार, मत हर पूछे कौन है। परा हमारे बार, डिठे सबे थाब, नहीं तुद जेहे आर। बदो हो पुरख बिदाता, ता तू सोहे आ। अंदर सच्चा ने हो लाया, प्रीत में अपने तन मन होए निहाल। जा गुर देखा सामने, सो कहो टल गुर सेविया। अहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे गुरु का। जन्म मर

हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत शौड बिखै बिख खाए माया मोह भरम पै भूले सुत धारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राख हो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर राम दास राख हो सरनाई। सो कह टल गुर सेवी अहनस सहज दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख ओवै सिफत खसमंदी नूर अरसहां कुरसहां। तुद डिठे सचे पात सहा मल जन

मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम देवा।

0: पढ़ पढ़ गड़ी लेती है पढ़ पढ़ प्रिय साथ पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड़ी है खात पढ़िए जेते बस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आरजा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल होर हमें चकना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहु तीर्थ पव्या ते तुलव्या बहु पेख किया देही दुख दिया सहवे जिया अपना किया अन ना खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया बस्तर ना पहरे एनिस कहरे मोन विगुता क्यों जागे गुरबिन सुता पागो पे ताना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नाम है किछ थाए ना पाई रहे बेवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आस अंदेशे तेने केवल हौ मैं शब्द जलाए पौड़ी।

0: प्यारा हो, जात में जोत जोत में जाता, अकल कला भरपूर रहा। तू सच्चा साहिब सिरसवाले जिनकी थी सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जोगश करना सो कर हया। महला दूजा
1: जोग शब्दंग ज्ञान शब्दंग वेद शब्दंग ब्राह्मण है, खत्री शब्दंग शूर शब्दंग शूद्र शब्दंग प्राकृत है, सर्व शब्दंग एक शब्द।

0: जगत उदारण नव निदान भगत पवतारण अमृत बूंद हर नाम विष की बिखे निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचर ते शब्द निशान बजायो गुर रामदास कल उचर ते शब्द निशान बजायो
1: अमें दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध और लोभ मोह वश करे सबे बाल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुर नवनि

दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए, सो कहो टल गुर सेविय एहनिस सहज सुपाए। दर्शन परसिय गुरु के जन्म मरण दुख जाए।

0: रसक नानक गुरे राज जोग ते माणियो।
1: सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो, बलह शलन सबल मलन भगत फलन कानपुर नेक कलंक बजी डंक चरु दल रविंद जियो। राम रवन दुर्त दवन सकल भवन कुशल करन सर्ब पूत आप ही देवाद देव सहस मुख फनिंद जियो। जरम करम मछ कछु हो ब्रहा जमुना कै कूल खेल खेलो जिन गिंद जियो। नाम सार ही ये तार तज विकार मन गेंद सतगुरु सतगुरु सतगुर गोबिंद जियो।
2: तू सतगुर चौ जुगे आप आपे परमेसर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुर तुर आद जुगाद अनाद कला तारी त्रोलोए अगम निगम उदरन जरा चमे आरोए। गुरु अमरदास थिर थप्यो पर गामी तारन तरन अकंतक बदै न सल कव गुरु रामदास तेरी शरण गुरु रामदास तेरी शरण।
0: ब्रह्मा देख शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोज ते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख्य देव अर दानव इक तिल ताको मरम ना पावत। प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भक्ति हर जनता के दर्श समावत तिस है त्याग आन को जाच है मुख दंत रसन सगल का सजावत। रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे सम

0: अशल पूरन अबनासी हरखवन अनंतर निर्मल बेगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को हो हे कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थिर हो तन तन ते तन जन जय कृपाल हर हर प्यो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थिर हो।
1: श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत

0: श्री गुरु सत जी हो।
1: अंत न पावत देव सबै मुन, इंद्र महा शिव जोग करी। हुन भेद बिरंच विचार रहे हो, हर जाप न छाड्यो एक करी। मथुरा जन को प्रभ दीन दयाल है, संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारण को, गुरजोत अर्जुन माहे तरी। रामदास गुरु जग तारण को, गुरजोत अर्जुन माहे तरी।
2: सतगुर खेमा तानिया जुग जू समाने, अनपो ने जा नाम टेक जित भगत अगाने। गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने। एहो

राखी अमृत छाट बिखै बिख खाय माया मोह परम पै पूले सुत दारा से उपरी एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत ते है।

एहन ससहज सुभाय दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसामंदी नूर अरसों कुरसों चटी तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे जिस पास बैठियां सोही है सवना दा विसाहु सजन सच्चा पातशाह सिर सहांदे जिस पास बैठियां सोही है सवना दा विसाहु सतनाम श्री वाहिगुरु सा

जी जंतर सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन भई बढ़ाई, जी जंतर सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन भई बढ़ाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सर्वदयाल, रहाओ आन दिन नानक नाम त्याए, जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे, ज्यों बारिक पित माता आन दिन नानक नाम त्याए, जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे, ज्यों बारिक पित माता। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा, जी जंतर सब तिसके किए, सोई संत सहाई, अपने सेवक की आपे राखे, पूरन भई बड़ा।

करे साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनु हुक्म लाए सी हुक्म ना हुए परवार दा खसमे का मन पाए सी खसमे भावे सो करे मनो चुकया सो फल पाए सी ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।

0: गौ ब्राह्मण को कर लावो गोबर तर ना जाई तोती टिका ते जप मारी तान मले शान खाई अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जय तरंदा महला पहला
1: मानस खाने करे निवाज छुरी वगायन तिन गणताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाद ना ब्यावे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करें आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया परपुर मथे टिका तेड़ तो तीक खाई हाथ छुरी जगत कसाई नील बस्त पैर होवे परवान मलेश तान ले पूजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़े यार मत पिटै वे मत पिटै एव अन असाडा पिटै तन पिटै फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाइए पौड़ी चित्ते अंदर सब

दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बह पर उपकारी। ऐसे दीन दयाल सतगुरु मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। अज दे शुभ दिहाड़े गुरता गद्दी उपर विराजमान होए तिना सतगुरां दा गुरता गद्दी गुरपुरब बेअंत संगतां सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे बड़ी शरदा प्रेम भावना नाल मना रहियां हन। यथा शक्त पेटावा अर्पण कर रहियां हन सतगुरु जी मेहरामत करनी सरबत साध संगत दियां हाजरियां तिल फुल पेटावां दर ते प्रवान करनियां।

जे मुहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे बस सियाणी है पितरी चोर करे बड़ी है।

जूठे जूठा मुख वसै, नित नित होए खुआर, सुचे एना आखिए बहन जे पिंडा तोए, सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पौड़।

ना ही किसे केरी बाज सचे ना दरवाट ऊपर खर्च मंगा जब मैं देता खाए दीवान एको कलम एका हमा तुमा मेल दर ले लेखा पीड़ छुटे नान का ज्यों तेल पौड़ी आप ही करना।